0: ऐ प्रभुतनाग विष्णु ऐ तो सोमको यहाँ बतोई प्रपति पोपा कोसो पोपचि तो सोमको रोज शिरा सेव पावरोंगे वो
1: ये पाचो पोता ती परंगां तो ती कटा कोई लोम्बा ती पातु कोतस कोतस कंग मास Mas penyenengan imut Persini pun kanjeng Roma Betara guru di ono enak Dolek loro Ojok menangnya didisik no Kang mas Wisin laku pocok Bareng pocot kang mas Lera disik no Aku dikrawat Tosongu kok kakak Wisin no Kau Nasib awak kok